0: रोने
1: एक्शन ले बाबू तू धा तू धा ये तू का हाँ बाबू रहा बाबू ऐसा देखी ना वो तानी तेरे लानी तेरे मुझे लानी तेरे हाँ वो दे ले कौन इंगुरिया आगाडी मुझे देख आगाडी मुझे आस आस बेसी ने पोछी ला कैसे पोछी देगी पक्का नहीं चाहो हाँ कंधे रहा आगे उनके बेटा देखने बेटा देख कहाँ से

मुस्कुराते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादान इतना भी नहीं समझते। ये अता है हम